साकत हर रह साध ना जानिया तिने अंतर होमे कंडा है। ज्यों ज्यों चलै चुबे दुख पावै जम काल सहे सर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर।

सो थान सो आवास वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोले

ठक न पाई मन्ने पत्स्यो प्रगट जाई मन्ने मगना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवारे साधार मन्ने तरे तारे गुरसिख मन्ने नानक पवे न पिख।

समस्तुल सलाम है, सदैव लय काम है, निर्बाद स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओवं आद रूप है, अनाद स्वरूप है,

थप अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, न करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है।

बहक खोत आठ पहर महाश्रम पाया बिरख जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जी आन लागे से बहु प्रकार ही रोत करजोड़ नानक दान मांगे हर को कंठपुर।

जब लग शब्द भेद नहीं आया तब लग काल संताय अनको दर कर्म प्रभु न जान से को दर्श प्यारा गुरु प्रसाद परम पद पाया नानक कहे विचारा पैर महला पहला।

योगी गृही पंडित सोते अपने अहंकारी माया मद माता रहा सोए जागत रहे न मुसे कोई रहाव सो जागे जैसा सत गुर मिलाए पंच दूत होए वासगत